0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
1: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: Prime Minister will also be visiting.
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से

सुबह की ताजी हवा, बादलों की नर्म चादर और हल्की सी बारिश की आहट। मौसम आज कुछ अलग सा मिजाज लेकर आया है। ऐसे सुहाने मौसम में अगर एक प्याली चाय, मनपसंद संगीत और आपका साथ मिल जाए तो सुबह की शुरुआत और भी खास हो जाती है। आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड खरा सोना। मैं दीप जानी लेकर कार्यक्रम सुहानी सुबह। तो चाहे आप घर पर हो, मॉर्निंग वॉक पर निकले हो, दफ्तर की तैयारी कर रहे हो या सफर में हो, अगले एक घंटे तक हमारा साथ बनाए रखिए। मधुर गीतों, काम की जानकारियों, मौसम, ट्रैफिक अपडेट, कभी कभी और दिलचस्प बातों के साथ हम आपकी इस सुबह को बनाएंगे और भी यादगार। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे संगीत, अच्छी बातें और अच्छी सोच के साथ। मैं देव जानी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर सुहानी सुबह।

सुन रहे हैं आप 100.1 एफएम गोल्ड पर खारा सोना पर कार्यक्रम सुहानी सुबह। मैं देवचानी आप सभी सुनने वालों के साथ। आइए दिन की शुरुआत करते हैं मौसम की ताजा जानकारी के साथ। आज कोलकाता में आसमान पर बादलों का डेरा रहने की संभावना है। दिन भर कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं, इसलिए घर से निकलते वक्त छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूलें। आज अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। हवा में नमी अधिक रहेगी, इसलिए उमस का एहसास भी बना रह सकता है। बीते 24 घंटों में बारिश लगभग 0.05 मिलीमीटर हुई है। और अब मछुआरों के लिए एक जरूरी सूचना, पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के आसपास समुद्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। हवा की गति कभी कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है, इसलिए 4 जुलाई यानी आज से 7 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल इतना ही। मौसम का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और आपके दिन की शुरुआत हो खुशियों और मुस्कान के साथ।

100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हैं सुहानी सुबह देवचानी के साथ। वक्त की रफ्तार कभी थमती नहीं, लेकिन इतिहास अपने पन्नों में हर दिन की एक खास कहानी सजोए रखता है। तो आइए पलटते हैं इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को और जानते हैं कि आज के ही दिन देश और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। आज के दिन यानी कि 4 जुलाई 1776 में अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की और ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। जी हां, आज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। 1777 में फिलाडेल्फिया और बोस्टन में पहली बार संगठित स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए थे। 1827 न्यूयॉर्क में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी आज के ही दिन। 4 जुलाई 1828 में बाल्टीमोर ओहायो रेलमार्ग का निर्माण शुरू हुआ, जो अमेरिका का पहला यात्री रेल मार्ग बना। 1837 में बर्मिंगम और लिवरपूल के बीच ग्रैंड जंक्शन रेलवे, दुनिया की पहली लंबी दूरी की रेलवे लाइन खोली गई। 1862 में चार्ल्स डॉटसन यानी लुइस कैरोल ने ऑक्सफोर्ड में आइसिस नदी, जो थेम्स है, पारिवारिक नौका विहार के दौरान एलिस लिडल के लिए एलिस इन वंडरलैंड की रचना की। और 1865 में यही एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड प्रकाशित हुई, यानी इसका पहला संस्करण जो है वो प्रकाशित हुआ। 1884 में फ्रांस ने पेरिस में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया, जो दोनों देशों के बीच मित्रता और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के साझा आदर्शों का सम्मान था। '1946 में फिलीपींस ने एक संप्रभु देश के रूप में अमेरिका से स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी एक सॉवरेन कंट्री के रूप में अमेरिका से स्वतंत्रता की स्वतंत्रता उसने पाई। 1959 में अलास्का को राज्य का दर्जा मिलने के सम्मान में अमेरिका का नया 49 स्टार ध्वज आधिकारिक हो गया। 1996 में हॉटमेल नामक एक निशुल्क इंटरनेट ईमेल सेवा की शुरुआत हुई थी आज के ही दिन। 1997 में नासा का अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर मंगल ग्रह के एरिस वेलिस क्षेत्र में उतरा। 2009 में विश्व व्यापार केंद्र

आज जयंती है भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भारत के अस्थाई प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की। 1898 में जिनका जन्म ब्रिटिश भारत के सियालकोट में हुआ था। आज जयंती है इतालवी अभिनेत्री, फोटो पत्रकार और मूर्तिकार जीना लोलो ब्रिजिडा की भी। उनका जन्म 1927 में हुआ था। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं भारतीय संगीतकार, निर्माता और गायक एम कीरावानी या फिर एम क्रीम, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था 1961 में। और साथ ही साथ अगर आप मना रहे हैं अपना जन्मदिन आज, तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू।

100.1 FM गोल्ड लखरा सोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह। मैं हूं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ। और देखते ही देखते घड़ी बता रही है वक्त हो रहा है 7:40 और 2 सेकंड्स। समय हमारे पास ज्यादा नहीं है तो कुछ और खूबसूरत से गीत और कुछ बातें सुनते रहिए हमारे साथ। बने रहिए 8 बजे तक।

100.1 FM गोल्ड खरसोना पर सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह। मैं हूं देवचानी आप सभी सुनने वालों के साथ। और अब आइए अखबारों का एक लेखा जोखा कर लेते हैं, देखते हैं आज के अखबार आज के दिन के बारे में हमारे देश और दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि एल नीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा। प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले महीनों में एल नीनो की स्थिति मजबूत होने के आसार हैं, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा, भारी वर्षा आदि का खतरा बढ़ जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने शुक्रवार को जारी अपने रिपोर्ट में ये दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। जम्मू से 3,865 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए। दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच 3,800 से अधिक श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू आधार शिविरों से रवाना हुआ। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की 57 दिवसीय वार्षिक यात्रा शुक्रवार सुबह एक साथ दो मार्गों से शुरू हुई। आईटी सचिव कृष्णन ने कहा, यूजर नेम से साइबर अपराध का खतरा। आईटी सचिव एस कृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने और साइबर अपराध की गंभीर आशंकाओं के मद्देनजर संदेश मंचों से उनके यूजर नेम सुविधा पर स्पष्टीकरण मांगा है। ये टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि इसी सप्ताह सरकार ने यूजर नेम सुविधा को लेकर नोटिस जारी किए हैं। यूजर नेम सुविधा के जरिए लोग अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना संदेश मंच पर चैट कर सकते हैं। यूजर नेम सुविधा शुरू करने की योजना की घोषणा के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चैट वाले जो भी ऐप है उनको नोटिस जारी कर पूछा कि उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। इस यात्रा की शुरुआत में ही मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय व्यवसाय का समर्थन करके वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने समेत 5 संकल्प श्रद्धालुओं के समक्ष रखें और उनमें सहयोग देने की अपील की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ यानी नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है। गोल्डन बूट, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का अवार्ड है, उसे हासिल करने की दौड़ में फ्रांस के किलियन एम्बापे और अर्जेंटीना के करिश्माई कप्तान लियोनेल मेसी के बीच बेहद करीबी मुकाबला चल रहा है। सन 2022 विश्व कप के गोल्डन बूट विजेता एम्बापे इस बार भी 6 गोल के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। ग्रुप स्टेज में सेनेगल और इराक के खिलाफ उन्होंने 2-2 गोल दागे थे।

रोनाल्डो और रामोस के गोल से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। ब्राजील नॉर्वे की भिड़ंत से पहले जर्सी की किल्लत, दुकानों के बाहर लंबी कतारें, मिनटों में खाली हो रहा है पूरा स्टॉक। अल्जीरिया के विश्व कप से बाहर होने के बाद रियाद महरेज ने संन्यास लिया। मेक्सिको से हैंड ऑफ गॉड मैदान पर खेलेगा इंग्लैंड। विश्व कप में

स्टेडियम के रिकॉर्ड मेक्सिको के पक्ष में रहे हैं। उसने यहाँ विश्व कप में अभी तक जो 10 मैच खेले हैं उनमें वो अजेय रहा है। इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल ने के लिए यहाँ की ऊंचाई चिंता की विषय है। ऑस्ट्रिया को

तो बस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, 7:54 और इसी के साथ यानी कि इस अगले गीत के साथ ही साथ मैं देवजानी लेती हूं आप सभी से इजाजत, और इस कार्यक्रम से ही इजाजत, क्योंकि आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पर 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद के साथ। और आप उससे पहले अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप बेशक ट्यून कर सकते हैं 107 FM रेनबो, जहां पर मैं रहूंगी आप सभी सुनने वालों के साथ 10:02 से। फिलहाल ये गीत आप सबके लिए छोड़कर जाती हूं, ये खूबसूरत सा गीत आपके इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दे इसी उम्मीद के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार

0: अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।

0: इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।

0: प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहले तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.0 lakh crore rupees this afternoon. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail Project. Later in

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर

0: संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। ये अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि श्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में होंगे।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता जाने का भी कार्यक्रम है। योग्यकार्ता में श्री मोदी प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के समापन में श्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद।
1: गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। 51 वर्षीय फुजिमोरी पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं और चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। थी इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के सर्वोच्च चुनाव प्राधिकरण ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रोबर्टो सांचेज को हराया। पहले दौर के मतदान में दोनों उम्मीदवार 33 अन्य उम्मीदवारों से आगे चल रहे थे। इस बार के चुनाव में अपराध एक प्रमुख मुद्दा था। मोल्डोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मुंटेनो को राष्ट्रपति माया सांडू ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मुंटेनो ने अपने इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति माया सांडू

0: ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तब तक मून जेनू अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रपति सांडू विभिन्न संसदीय दलों से परामर्श के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगी। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 4 जुलाई को 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वाधीनता की औपचारिक घोषणा की थी। स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे दक्षिण यूरोप में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्पेन में कैटालोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग अब भी बेकाबू है, जिससे लगभग 2300 हेक्टेयर भूमि की वनस्पति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में लू के कारण 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण जून के अंत से अब तक 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया है। कोलंबिया के जॉन एरियास ने 14वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल किया। अंतिम 16 के मैच में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कनाडा के फेलिक्स ओवर एलियासिम ने अमरीका के माइकल झेंग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच महिला सिंगल्स में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला और कोको गॉफ के साथ साथ जापान की नाओमी ओसाका भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केको फुजीमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. 6-day state funeral of Iran's former supreme leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei to begin in Tehran today. 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed arrested in India. Conservative leader Keiko Fujimori wins Peru's presidential election. Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami in FIFA World Cup. Colombia and Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And Novak Djokovic equals Roger Federer's record at Wimbledon by notching 105th career victory. And now the news in detail. In Iran, preparations are underway for the 6-day state funeral of the former supreme leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. The authorities expect millions of mourners to attend the ceremonies with extensive security and traffic arrangements in place. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

0: है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. He will also dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpad in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. Gujarat Anti-Terrorist Squad ATS has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activity.

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार 100.1 एफएम गोल्ड खारा सोना पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं। मैं देव जानी सुन रहे हैं आप लो आ गई उनकी याद।
1: बाजीगर में बाजीगर
0: एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज ने प्रेम, खुशी, विरह, शरारत और भावनाओं के अनगिनत रंगों को सुरों में पिरोया। उनकी आवाज सुनते ही 90 के दशक की सुनहरी यादें ताजा हो जाती है। जी हाँ, आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित है हिंदी सिनेमा की खूबसूरत गायिका, खूबसूरत आवाज की मलिका, पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत पार्श्व गायिका अलका याग्निक को। कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कुमार सानू अलका याग्निक का एक बहुत बहुत पॉपुलर और खूबसूरत युगल गीत बाजीगर फिल्म से, बाजीगर ओ बाजीगर। इस गीत से एक के बाद एक खूबसूरत गीत, जिन गीतों ने उनके मधुर स्वर का जादू हर दिल तक पहुंचा दिया। समय बिल्कुल कम है, 11:19:30 12 बजे तक का हमारा यह सफर जारी रहेगा। और इस कार्यक्रम में अनगिनत ऐसे गीत हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है अलका याग्निक द्वारा गाए गए गीत, पर फिर हालत ऐसी हो जाएगी कि समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा और गाने बहुत बहुत सारे ऐसे रह जाएंगे, छूट जाएंगे, जिन्हें हम शामिल करना चाहता है। तो चलिए कुछ ऐसे गीत सुन लेते हैं जिन्हें आवाज़ से नवाजा है अलका याग्निक ने, कभी सोलो गीत और कभी अलग अलग मेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ, जैसे कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, अरिजीत सिंह वगैरह वगैरह।

अलका याग्निक, उदित नारायण और वसुंधरा दास की आवाजें फिल्म लगान से गीत ओरी छोरी। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को हुआ था। उनकी मां शोभा याग्निक शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। संगीत का माहौल घर में तो था ही, इसलिए अलका जी ने बहुत छोटी सी उम्र से ही रियाज शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। उनकी प्रतिभा देखकर परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई में शुरुआती संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन उनकी लगन और मधुर आवाज ने संगीतकारों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया।

0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

1988 में फिल्म तेजाब का 1-2-3 आया और देखते ही देखते पूरे देश की जुबान पर छा गया। इस गीत ने न केवल माधुरी दीक्षित को नई पहचान दी बल्कि अलका याग्निक को भी फिल्म संगीत की अग्रणी गायिकाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद सफलता का सिलसिला कभी नहीं रुका। 90 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है और इस दौर की सबसे लोकप्रिय महिला आवाजों में अलका याग्निक सबसे आगे रही। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो हर अभिनेत्री पर स्वाभाविक लगती थी।

लगभग हर बड़े संगीतकार ने उनकी आवाज का भरपूर उपयोग किया। उनकी गायकी में शास्त्रीयता की नींव तो थी ही और आधुनिकता की सहजता भी थी। अलका याग्निक रिकॉर्डिंग से पहले बहुत कम बोलती थी ताकि आवाज पूरी तरह ताजा रहे। वे उच्चारण पर विशेष ध्यान देती थी। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगला, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसके साथ ही साथ कई और भाषाओं में भी गीत गाए। उनकी ये खासियत रही कि उनकी आवाज कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों पर समान रूप से जमी। उन्होंने माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, यहां तक कि दीपिका पाडुकोण के लिए भी यादगार गीत गाए। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज किसी एक स्टार तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे दौर की पहचान बन गई।

अलका याग्निक को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके गीत आज भी रेडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और संगीत प्रेमियों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा है। उदित नारायण और कुमार सानू के साथ उनकी जोड़ी को हिंदी फिल्म संगीत की सबसे सफल जोड़ियों में से गिना जाता है। इनके साथ उनके रोमांटिक गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी आवाज में मिठास तो थी ही, लेकिन उतनी ही स्पष्टता और भाव भी। संगीत का दौर बदलता गया, नई आवाजें आई, संगीत की शैली बदली, लेकिन अलका याग्निक की लोकप्रियता बनी रही। उन्होंने समय के साथ खुद को ढाला, लेकिन अपनी गायकी की मिठास और स्पष्ट उच्चारण से कभी भी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आज भी उनके गीत नई पीढ़ी उतनी ही चाव से सुनती है जितना उनके समकालीन श्रोता सुनते थे।

सुर कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छी आवाज समय के साथ और भी अनमोल हो जाती है। अलका याग्निक की गायकी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने केवल गीत नहीं गाए बल्कि करोड़ों लोगों की यादों के भावनाओं में रंग भर दिए। इसी उम्मीद के साथ कि उनकी आवाज यूं ही हमारे जिंदगी का संगीत बनी रहेगी, आज के इस लो आ गई उनकी याद कार्यक्रम से मुझे यानी देवजानी को दीजिए इजाजत। कल दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने

0: के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरिटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The inauguration of the new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The bilateral investment agreement or BIA between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said that the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tributes to Swami Vivekanand on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Radhakrishnan described Swami Vivekanand as a great patriot, philosopher and spiritual visionary. He said that Swami Vivekanand rekindled India's civilizational consciousness and carried the timeless wisdom of the country to the world. Prime Minister Modi said that Swami Vivekanand's spiritual teachings will continue to provide the nation with renewed energy and direction in achieving the vision of a Viksit Bharat. Venezuela's Foreign Minister Juan Gil has expressed gratitude to the Government of India and Prime Minister Narendra Modi for their timely support and assistance in helping the victims of the devastating earthquake. Mr. Gil today visited the Indian Military Field Hospital established under Operation Amistad for providing treatment to those affected by the earthquake. It is providing free round-the-clock medical services to the people of Venezuela. Speaking on the occasion, Venezuela's Foreign Minister said that more than 400 people are treated daily at this field hospital. in Iran.

0: করার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমবায় ব্যবস্থা কৃষক, মহিলা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে দেশবাসী আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করছেন। 1902 সালের আজকের দিনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর সমাজ মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয় চেতনাকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান অতুলনীয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট রামলালার মন্দিরে অনুদানের অর্থ সম্পদ নয় ছয় নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দলের রিপোর্ট আলোচনার জন্য আগামীকাল এক বৈঠক ডেকেছে। এই বৈঠকে প্রশাসনিক এবং ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেন বিষয়েও আলোচনা হবে। বিশ্বকাপ ফুটবলে আজ রাতে রাউন্ড অফ 16-এর প্রথম খেলায় কানাডা মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলবে। হিউস্টন স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে রাত 10:30। অন্য ম্যাচে প্যারাগুয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলবে। ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে রাত 2:30। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজস্থানের যোধপুর বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন। সন্ধ্যায় তিনি গুজরাট যাবেন। সোমবার তিনি 6 দিনের ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফর শুরু করবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাকিস্তান ভিত্তিক 23 জন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবসে দেশবাসী আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে তাকে স্মরণ করছে। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রদ্ধা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधा

0: कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट

0: टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।

मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि BIA अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्याय शास्त्र को भी दर्शाता है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हेवेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के शिष्टमंडल शामिल थे। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के शाश्वत ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।

0: किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने भालोत्रा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन से केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में काबो वर्दे को अतिरिक्त समय के 3-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन

करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। Join Indian Navy।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई

0: इस जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1.05 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with the engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 3. I beg your

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल्ड खरा सोना के सभी श्रोताओं का, सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक चाय एंड क्लासिक्स में। 5:16 हुआ है अभी वक्त और मैं रहूंगी आपके साथ 6:30 तक। 6:00 हम लेंगे एक न्यूज ब्रेक और 6:20 पे मैं एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने लेकर आपका अपना कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स। और अभी फिलहाल सबसे पहले एफएम गोल्ड परियोजना प्रस्तुति।
2: हंड्रेड पॉइंट वन एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
1: आज मैं आपको जिस योजना के बारे में बताने जा रही हूं वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की मिट्टी में जीवन है और किसानों की मेहनत में है जादू। लेकिन खेती की असली सफलता तब होती है जब सिंचाई की सुविधा हर खेत तक पहुंचे। इसी सोच के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम संक्षेप में कहते हैं PMKSY। ये योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचाना, सिंचाई के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देना और पानी की हर बूंद का सही उपयोग करना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने में सहायता देती है। इन तकनीकों से पानी की बचत होती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादन में सुधार होता है। इस योजना के मुख्य घटक है हर खेत को पानी, यानी सिंचाई की सुविधा हर छोटे बड़े खेत तक पहुंचना। पेयर ड्रॉप मोर ड्रॉप, कम पानी में ज्यादा उत्पादन, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। वॉटरशेड डेवलपमेंट, मिट्टी जल और पौधों का संरक्षण, सिंचाई अवसंरचना का निर्माण जैसे कि नहरें, तालाब, जलाशय। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी है बल्कि खेती भी टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत बन रही है। आज देश के लाखों करोड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जहां पहले सूखे के कारण खेत बंजर रह जाते थे, अब वही खेत हरे भरे हो उठे हैं।
2: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति

ये खूबसूरत क्लासिक महेंद्र कपूर ने गाया। फिल्म गुमराह से मैंने इस गीत को चुना, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा और रवि ने संगीतबद्ध किया। अगला गीत एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म हमराज से। गीतकार साहिर, संगीतकार रवि।

जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए इस अगले गीत को, इसे मैंने चुना है फिल्म ममता से।

गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरा साया से। इस गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। दोस्तों, रूह से जुड़े जो रिश्ते होते हैं उन पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, कोशिशें कर लो तोड़ने की से ये और भी गहरे होते हैं।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: फाइव 44 और 59 सेकंड्स आप सुन रहे हैं चाय एंड क्लासिक्स अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 100.1 FM गोल्ड। खरा सोना। श्रोताओं, जीवन में हम कुछ भी, जी हाँ कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं, ना प्रेमी ना जीवन साथी, बल्कि कई बार आपको पसंद किया जाता है आपकी सुंदरता से, कई बार आपके व्यवहार से। जिसको मन चुनता है वो होता है प्रेमी, फिर वो आपको मिले या फिर ना मिले, दिखे ना दिखे, बात हो ना हो, उनका प्रेम जीवन भर आप में सफर करता है बिल्कुल एक यात्री की तरह। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म याराना का इस गीत को अंजाम

और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, शैलेंद्र के अल्फाज के साथ शंकर जयकिशन का संगीत। 5:50 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 100.1 FM गोल्ड खरा सोना।

की चुस्कियों के साथ लीजिए मज़ा इन सदाबहार गानों का, इन क्लासिक्स का। और अगला गीत होगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जिंदगी का, शैलेंद्र के अल्फाज के साथ शंकर जयकिशन का संगीत। और इसी के साथ बता दूं कि 6:20 पर मैं लौटूंगी एक बार फिर लेकर चाय एंड क्लासिक्स, और इस गीत के बाद 6 बजे आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का

0: लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। आज के कार्यक्रम में हम भारत और जापान संबंधों और दोनों देशों के बीच आयोजित 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री सुनाई तकाईची 1 से 3 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे, भारत और जापान की ये रणनीतिक साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता सहयोग भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे और ये निर्णय दोनों देशों के संबंधों को किस प्रकार नई दिशा देंगे, आइए विस्तार से समझते हैं।
2: आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, खनिज, एआई

0: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दोनों देशों ने सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी और मानव केंद्रित एआई के विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन और जापान की जेनिक पहल के बीच संस्थागत सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के रणनीतिक भंडारण, समुद्री ऊर्जा परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं पूरे देश में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बैटरी निर्माण और औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने नेक्स्ट जनरेशनल मोबिलिटी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इसके अंतर्गत रेल, सड़क, मानन, जहाज निर्माण, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश और औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने जापान से भारत में बढ़ते निजी निवेश का स्वागत किया और विकसित भारत के लक्ष्य में उसके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पिछले शिखर सम्मेलन में तय किए गए 10 ट्रिलियन येन के निवेश लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति की भी सराहना की। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA की समीक्षा, निवेश का माहौल और बेहतर बनाने तथा व्यापार को नई गति देने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत जापान SME फोरम की शुरुआत का स्वागत किया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, औद्योगिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए सड़क, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सेमीकंडक्टर, जैव ईंधन और संपर्क परियोजनाओं में जापान के सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाले औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए भी अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
1: श्रोताओं, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई ये पहले इस बात का संकेत है कि दोनों देशों की साझेदारी अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा, निवेश और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए क्षेत्रों तक पहुंच रही है। आकाशवाणी समाचार ने भारत जापान संबंध और 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पर जापान में भारत के पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है।
1: श्रोताओं, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं में इंडो पैसिफिक क्षेत्र बार बार सामने आया। हिंद प्रशांत की अवधारणा नई नहीं है। पिछले 2 दशकों में ये विचार धीरे धीरे विकसित हुआ जब जापान ने अपनी रणनीतिक सोच को पूर्वी एशिया से आगे बढ़ाकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साझा रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखना शुरू किया। इसी दौरान भारत ने भी अपनी लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ाते हुए एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। समय के साथ साथ दोनों देशों की ये सोच एक दूसरे के करीब आई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित हुआ। आखिर ये क्षेत्र दोनों देशों के विदेश और सुरक्षा नीति में इतना अहम क्यों माना जाता है और भारत जापान की साझेदारी से इसका क्या संबंध है, आइए समझते हैं।
0: इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भारत के लिए ये क्षेत्र आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक हितों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का अधिकांश समुद्री व्यापार और ऊर्जा आयात इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहीं जापान की अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार मार्गों पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी साझा सोच के आधार पर भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत किया है। दोनों देश फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। समुद्री सुरक्षा के

0: देशों का सहयोग लगातार बढ़ा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, विशेषकर मलक्का जलडमरू मध्य जैसे मार्ग भारत और जापान दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और कानून आधारित व्यवस्था बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। भारत और जापान क्वाड के सदस्य हैं और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत नियमित शिखर बैठकें, रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और नई प्रौद्योगिकियों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो पैसिफिक की अवधारणा केवल किसी एक विशेष देश के उदय की प्रतिक्रिया नहीं है, ये भारत और जापान की उस साझा सोच का परिणाम है जिसमें दोनों देश इस पूरे क्षेत्र में खुले, समावेशी, संपर्क संपन्न और संतुलित समुद्री क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। यही साझा दृष्टिकोण आज भारत जापान संबंधों को नई मजबूती देने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को भी नई दिशा दे रहा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, बदलते वैश्विक परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी भी नई दिशा ले रही है। इस पूरे परिदृश्य और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की भूमिका को लेकर आकाशवाणी समाचार ने भारत के पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं। भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विश्व में शांति और सद्भावना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है। इस समय जो विश्व में स्थिति है उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की, पैसिफिक की बात करते हैं, उस पर कोई देश खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है।
1: भारत के महासागर विजन, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बीच बढ़ता तालमेल इस बात का संकेत है कि दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यही साझा दृष्टिकोण न केवल भारत जापान संबंधों को नई मजबूती दे रहा है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता तथा सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: न्यूज ब्रेक के इस पार 100.1 FM गोल्ड खरा सोना के सभी श्रोताओं का, सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने चाय एंड क्लासिक्स में। 6:21 और मैं रहूंगी अब आपके साथ 6:30 तक, यानी कि बस कुछ ही क्षण और 6:30 पे आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं चाय एंड क्लासिक्स एक बार फिर।

उस ब्रेक के इस पार। दोस्तों, किसी ने मुझे खूब कहा कि खुद के लिए भी सोचा करो, खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। और तभी मुझे लगा कि ये सच है कि खुद के लिए सोचना बेहद जरूरी है। और जिंदगी जो है ना, उसे हमें जी लेनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है जो पल पल हर पल गुजर रही है। और इसी सोच के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे, और मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे महबूब से आप सुनेंगे इस गीत को, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। और इसी के साथ, जी हाँ, यही इस सेगमेंट का एक लौता गीत है आपके लिए। और इसी के साथ मैं आपकी आरजे पलट लूंगी, आपसे विदा। आप सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड के। और एक बात जाते जाते कहना चाहूंगी कि इंसान का सबसे बेहतरीन साथी दोस्तों उसकी सेहत है। अगर उसकी सेहत उसके साथ है तो सब कुछ साथ है, पर यदि उसकी सेहत उसके साथ नहीं, उसका साथ छोड़ जाए, तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए सेहतमंद रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।

0: Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the Delhi code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर हम नजर डालेंगे। आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर 2331-0481 और तीसरा नंबर 2371-7106 और दिल्ली से बाहर के

0: इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। हम श्रोताओं आपको बता दें किसी भी स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं विशेष हमारे मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस।
2: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%. And monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी केंद्र का उद्घाटन किया। घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तैयार की गई ये फैसिलिटी देश की टेक मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक अहम पड़ाव है। साणंद पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाईटेक प्लांट का दौरा किया और प्रोडक्शन प्रोसेस का जायजा लिया। पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर इस फैसिलिटी से सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
0: And Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for several development projects worth over 1 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. And in the meanwhile, we are joined in by our first caller, B.R. Nath from Delhi. Mr. Nath, welcome to the show.
2: Hello.
3: जी नमस्कार सवाल
2: नमस्कार देखिए आज एक एक्सपर्ट से पूछना नमस्कार एक्सपर्ट और आपको भी ये जो क्या नाम TDS और AIS बने 30 जून तक अपडेट नहीं हुआ

0: भी दिखाते हैं, ये EIS नहीं और TIS, क्या नाम इसमें TIS, ये एनोमली क्यों है?
1: देखिए, ये आयकर विभाग ने अब जो आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है, जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से 7 तक वो किए गए हैं, और ITR 1 और 2 जो है वो 31 जुलाई तक, और ITR 3 और 4 जो है वो 31 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। आपका जो दो मूल सवाल है कि ये अंतर क्यों है, अगर अंतर आपको नज़र आता है तो आप आयकर विभाग से तुरंत उसका प्रश्न पूछें, उस पर आपकी दोनों की सहमति, जैसे आपने कहा TIS है और AIS है, तो AIS में आपने देखा होगा कि जब आपके पास वो आता है कंप्लीट डिटेल, उसमें ये भी होता है कि एक असेसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या किया। अगर असेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है उसको। तो अगर कोई अंतर है तो कृपया करके आयकर विभाग से अविलंब संपर्क करें। समय चूंकि कम है, रिटर्न दाखिल करने में काफ़ी कम समय तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ समय थोड़ा कम बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप तुरंत उनसे करें, जो कुछ भी विसंगतियाँ होंगी या जो कुछ भी अंतर होगा उसको दूर किया जा सकता है।
2: और इस बीच दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
3: आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि गोल्ड बॉन्ड होते थे, पहले लोग काफी निवेश करते थे गोल्ड में, तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश अच्छा माना जाता था, और अभी सडनली गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, और कोई ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि इसको क्यों बंद किया गया है, फिर कब तक के लिए बंद किया गया है। और कई बार सुनने में आया कि गवर्नमेंट को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है, इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो आपका इस पर क्या व्यू है, और क्या ऐसा सच में कुछ नुकसान होने के स्कोप था इसमें गवर्नमेंट को जो वो देख नहीं पाए उस टाइम पे?
1: देखिए, जो गोल्ड बॉन्ड लाया गया था उसके पीछे मकसद ये था कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें और उसके वजह पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें, एक तरीके से कागजी गोल्ड आप इसे कह सकते हैं। और इसमें ये कहा गया था कि 8 साल के बाद जो कुछ भी बाजार की कीमत होगी उस कीमत पर आपको उसका भुगतान किया जाएगा। तो इससे सरकार के लिए, इसके लिए फायदे का सौदा यह था कि उनको आयात करने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए जो डॉलर देना पड़ता है वो डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार सीधे सीधे आयात नहीं करती, लेकिन जो भी एजेंसीज आयात करती हैं उनको डॉलर पे भुगतान करना पड़ता, तो डॉलर के ऊपर दबाव कम करने और सोने के आयात को कम करने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन जब इसकी प्रकल्पना की गई थी तो उस समय किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि सोने के भाव इतने तेजी से ऊपर चले जाएंगे। आज 161 का है, और ये भी आप याद रखिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद जो था सरकार की उधारी का एक हिस्सा वो था। तो अब अगर सरकार की उधारी बहुत महंगी हो जाती है तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को ही होगा। बजट के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि इसे क्यों जारी अभी नहीं रखा गया है और इसमें किस किस तरह के परेशानी हो सकती है। सरकारी व्यवस्था को अगर आप देखें, उनके ऊपर खर्च के बोझ को देखें, तो इस वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो बंद किया गया है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए जो कुछ भी देनदारी है वो पूरी की जा रही है। 8 साल का समय जब पूरा होगा उनको भुगतान होगा, हर साल 2.5% की दर से ब्याज, जो कि मूल जिस रकम पे आपने लिया था उस के हिसाब से 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद आप प्री मिच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हैं, और 8 साल के बाद जब आप पूरा रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक भी पैसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। तो एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसकी लागत सरकार के लिए बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है।
4: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र,
5: हेलो हेलो सर। हाँ सर, एक प्रश्न था, मैंने एक महीना पहले पूछा था लेकिन शायद हम ठीक से पूछ नहीं पाए थे तो इसलिए ठीक से जवाब नहीं मिल पाया। तो जैसे एक हम न्यूज पढ़े थे राजस्थान पत्रिका में कि कुछ कंपनियों का नाम था, वो नाम तो ले नहीं सकते, इंडियन कंपनी का, कि इनका मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये अच्छा बात है या कैसा, हम इसको कैसे कैसे रूप में लें?
1: देखिए जितेंद्र जी, मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप अगर बाजार पूंजीकरण को एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति के नज़रिए से सोचे तो जो शेयर की मौजूदा कीमत है और बाज़ार की जो में जितने शेयर उपलब्ध हैं उनको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक बाज़ार पूंजीकरण आता है। बाज़ार पूंजीकरण में नियमित तौर पर बदलाव होता रहता है, बाज़ार ऊपर जाएगा तो बाज़ार पूंजीकरण ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो बाज़ार पूंजीकरण भी नीचे आ सकता है। अब आपका मूल प्रश्न है कि आपने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा कि उनका जो कुल निवेश है उनके बाजार पूंजीकरण से ज्यादा हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। उनके पास बस ये ध्यान में रखना है कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या है, यानी कि कितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और उससे उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अगर संतुलित वे में है तो कोई गलत नहीं है, और ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है कि आपकी जो शेयरों की कीमत है उससे ज्यादा आप लेते हैं, वो एक लेवरेजिंग होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं, इसके आधार पे आप बाजार से पैसा उठाते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो शायद थोड़ा सा उसके ऊपर एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि 10-15% ज्यादा है तो उसमें कोई हैरानी या कोई भी दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आती।
4: राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ the OSET facility inauguration by Prime Minister Modi in Gujarat in Sanand this evening, you know, this is really heartening. Almost 5 billion semiconductor chips capacity, annual capacity, production capacity, this is humongous given the importance of semiconductors across electronics industries and of course the new technology which is coming in, AI as well. So how do you see this kind of, if we look at our dependence on the foreign countries, especially Taiwan and other countries, China of course.
1: When you are developing a mobile handset, when you are becoming a leader in mobile handset export, you need a complete value chain. You need a complete supply chain. Mm. So first you develop the product, then you develop the component, now you need the semiconductor. So many of the companies are coming into this field, many of the projects have been approved. So with this kind of infrastructure, we are going to have a

0: प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए। फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि अगले छः महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के निवेश के नज़रिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, 3 साल के निवेश के नज़रिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है। एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें। दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है। देखिए, पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है, हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पे बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पे चाहेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे से कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मॉनसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते हैं ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है, वहाँ पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये 4 सप्ताह हमने लगातार 4th सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई, उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी।
1: राइट, और नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी
2: नमस्ते, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्कार
2: सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट फॉरेन रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, और you can now expect it to stable at around 95 for some more time? What is your view on dollar?
0: Okay. शंकर जी, इफ यू सी द नंबर्स ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट बाय फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आफ्टर वी हैव सीन दिस टैक्स बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, वी हैव सीन गुड इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड दैट इज गिविंग सम सपोर्ट टू रुपी विच वॉज बिलो 95. सो एट दिस मोमेंट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ और 3 मंथ वी विल हैव सम मोर स्टेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिसरप्शंस इन द वेस्ट एशिया सिचुएशन, देर मे बी मोर डिमांड फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर क्रूड परसेज, देन इट कैन हैव सम प्रॉब्लम, बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months मोर स्लाइडिंग ऑफ द रूपी, एंड इट विल बी बिलो 95 और बिटवीन 94 and 95.
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द US मार्केट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टॉक मार्केट्स रिमेन्ड closed yesterday in observance of Independence Day. Meanwhile, major US indices finished the holiday shortened week with solid gains. The Nasdaq Composite Index surged 2.1%. The Dow Jones Industrial Average rose by 2% during the week to close at a record high of 52,900. The S&P 500 gained 1.75% during the week. Investors cheer the weaker than expected US jobs data and are now looking for a softer inflation numbers, reinforcing expectations that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its policy meeting scheduled for the end of this month. Shishirji, softer inflation number expectations from the US, the public over there, and of course the hawkish Fed. Your views on that?
0: I think that's something, expectation is there, but going by the current price movement, and especially after this entire West Asia thing, I don't think that the inflation will be much softer there, and that is why Federal Reserve is very much cautious, and the commentary which we have seen, which we have heard from the Federal Reserve is something which we have to keep in mind, and the month end meeting of Federal Reserve will also determine. But softer inflation, not much fall in inflation one can expect in the US.
1: Right. And in some other news, the monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that President Draupadi Murmu has approved the government's proposal to convene

0: In the session from the 20th of July. In a social media post, Mr. Rijiju said that the session will focus on meaningful debates, discussions and decisions on issue of national importance. You are tuned in to the Market Manta program on Akashwani. Listeners, you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers. The Delhi STD code if you're calling from out of Delhi or from your mobile phones. Meanwhile, we are joined in by our next caller, Tapash from Kolkata. Tapash.
1: CTG, Tapash Chakravarti. Actually, last week that Kolkata zone now started. Actually, last 1 year we are unable to contract actually. पता नहीं मैंने क्यों इधर टेलीकास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने भी कैलकाटा से कोई कॉलर आपको मिला क्या, नहीं मिला आपको, ये नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो सर आप सुन रहे हैं ना?
2: हाँ जी, बोलिए बोलिए।
1: हाँ, तो उसमें मैं अभी क्या किया, बॉन्ड खरीद रहा हूँ। बॉन्ड में 10-11% मेरे को इंटरेस्ट देता है और मैं वो इंटरेस्ट में चल रहा हूँ। तो आप मेरे को बताइए ये ठीक है क्या? ये बेसिकली ए प्लस और ए कैटेगरी बी प्लस ऐसा आता है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है महीना में
2: जी जी,
1: और मेरे को इसमें चल रहा है। तो सर ये ठीक ठाक है क्या, ये जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा है।
2: नहीं देखिए, आपका फैसला अच्छा है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपने कहा कि आप ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की बात करें तो ट्रिपल ए के नीचे तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर बॉन्ड लेना भी हो तो आप कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके बॉन्ड्स को अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। म्यूचुअल फंड में भी कुछ जो खास तौर पर डेट फंड हैं उसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो। और कुछ पैसा मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना सुरक्षा आपको देगा। वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें।
0: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the West Asia conflict erupted in late February, as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign minister said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72 with the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
2: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
0: yes,
2: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution, at least for the next 1 month. And after this supply is exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
0: Right.
3: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से

0: ये प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शशि जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।
1: देखिए, अगले सप्ताह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो Q होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है। तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है, तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा। जो हमने 4 सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियां और तेज होगी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देखी।
0: तो छोटे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? अभी
1: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
2: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप्स फेयरिंग?
1: स्मॉल कैप आई थिंक have always been either going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
0: Right. शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
2: Thank you so very much, शशि जी. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the 4th straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil Kumar saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे

ने ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ चिप का उत्पादन का लक्ष्य रखने के लिए बधाई दी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि

0: पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विकास को रेखांकित करती है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालीन योगदान को महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सैन्य कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Addressing on the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. Highlighting the rapid progress of the sector, the minister noted that the Sanand facility transitioned from its groundbreaking ceremony to commercial production in just 27 months. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district. Greenfield Refinery is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सब

0: अभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था।

0: जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi inaugurated